0: இதையே இதையே உன் அக்கால் கேட்டால், ஐயோ, உன்னை தேடி கண்டுபிடிக்க என்னை அனுப்பினாள் அந்த மாணிக்கம். உன்னை கண்டுபிடித்து விட்டேன், ஆனால் உன்னை கொண்டு போய் ஒப்படைக்க உன் அக்கால் இல்லையே. அவளை மணந்த கடமைக்காக என் கையால் எழுநீர் இறைக்கும் வாய்ப்பு கூட நான் இழந்து விட்டேன் கோபால்.
1: மாமா, மாமா, இப்ப நீங்க என்ன சொல்றீங்க? அக்கா இன்னும் சாகல, அவ உயிரோட தான் இருக்கா.
0: உயிரோடு இருக்கா? உன் அக்கா உயிரோடு இருக்கிறாளா? என் மனைவி உயிரோடு இருக்கிறாளா? அவள் எங்கே இருக்கிறாள்? நான் அவளை பார்த்தியாக வேண்டும். அவளை நான் பார்க்க முடியுமா? மாமா, மாமா, இதை வாயால எப்படி சொல்லிட்டு சொல்ல சொல். மாமா, மாமா, அந்த அழக பிள்ளை. ஐயோ,
2: மாமா இங்கே உடம்பு தேவையில்லையா? அவருக்கு
3: தேவையில்லை. நீங்க வந்தா இந்த லெட்டரை கொடுக்க சொல்லிட்டு அவசரமா எங்க போயிட்டாரு?
2: உடம்பு சரியானப்ப இவர் எங்க வெளியில போறாரு? அன்புள்ள கோபால், உன்னை சந்திக்கும் ஆர்வத்தினால் அலைந்து அலைந்து திரிந்து உன்னை சந்தித்து விட்டேன். ஆனால் காலம் கடந்து விட்டது. இன்று இந்த சந்திப்பிலே உன் மீது ஒரு பெரிய பொறுப்பை சுமத்துகின்றேன். என் மனைவியின் வாழ்வை பாழாக்கிய வஞ்சகன் அழகு பிள்ளையை வாழ விட்டு நான் சகித்திருக்க முடியாது. அவன் வாழ்வை இன்றோடு முடித்து விடுகிறேன். அதன் விளைவாக நான் இனி வாழ முடியாது. ஆகையால் என்னையே நம்பி வந்த அநாத குழந்தையையும் டாக்டருடைய தர்ம சொத்துக்களையும் உன் பொறுப்பில் விட்டுவிட்டு செல்கின்றேன். இப்படிக்கு அன்புள்ள சுந்தரன், என்ன, எங்க மாமா அழக பிள்ளைய கொலை செய்ய போறாரா? எங்க மாமா கொலையாளி ஆகப்போறாரா? ஐயோ பார்வதி, நான் அவசரமா திருச்சிக்கு போனோம். போயிட்டு வந்து மற்றதெல்லாம் பேசுகிறேன். ஜாக்கிரதையா பார்த்துட்டு.
4: பக்தரே, பகவானுக்கு உன் அஞ்சலி செய்கிறாயா? லோகமாதாவின் உன் யோக நிலை காட்டி நிற்கிறாயா? பஞ்சமா பாதகங்களின் உறைவிடமான உன் நெஞ்சத்திற்கு பக்தி ஒரு கேடா? ஒரு பத்தினி பெண்ணின் மாதத்தை பந்தாக உருட்டி விளையாடி இருக்கிறாயே, அந்த வெறி விளையாட்டுக்கு பரிசு இதோ.
5: आकाशवाणी है, संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है देवव्रत मिश्र का सितार वादन। वाराणसी के प्रतिष्ठित संगीत घराने में जन्मे देवव्रत मिश्र ने अपनी मां प्रमिला मिश्रा से संगीत की प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की और अपने पिता पद्मश्री पंडित शिवनाथ मिश्र के मार्गदर्शन में सितार की विधिवत शिक्षा प्राप्त की। आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार देवव्रत मिश्र ने ठुमरी परंपरा और बनारस घराने के गायकी की विशिष्ट बारीकियां अपने दादाजी ठुमरी सम्राट पंडित महादेव प्रसाद मिश्र से सीखी। इस प्रभाव ने उनके सितार वादन को एक अनूठी पहचान दी। सितार वादन की शिक्षा में पोस्ट ग्रेजुएट और गोल्ड मेडल के साथ संगीत प्रवीण देवव्रत मिश्र ICCR के सूचीबद्ध कलाकार भी हैं। उन्होंने भारत और विदेशों में कई प्रतिष्ठित मंचों पर सितार वादन की सफल प्रस्तुतियां दी हैं। इनमें तानसेन संगीत समारोह, संकट मोचन संगीत समारोह, सप्तक संगीत समारोह और अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला प्रमुख हैं। उन्होंने अमेरिका, कनाडा, स्पेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी जैसे कई देशों में अपने सितार वादन से संगीत प्रेमियों को मंत्रमुग्ध किया है। देवव्रत मिश्र को नेशनल यूथ फेस्टिवल अवार्ड, स्वरमणि अलंकरण, काशी रत्न संगीत शिखर सम्मान, BHU कौस्तुभ सम्मान, जर्मन बेस्ट जैज क्रिटिक अवार्ड और वर्ल्ड म्यूजिक विजनरी अवार्ड USA से सम्मानित किया गया है। आज के कार्यक्रम में आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार प्रशांत मिश्र। देवव्रत मिश्र अपने सितार वादन का आरंभ राग जोग से कर रहे हैं। विलंबित और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध हैं।
6: दिस इज आकाशवाणी। इन द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक टुनाइट वी ब्रिंग यू सितार रिसाइटल बाय देवव्रत मिश्रा। बॉर्न इनटू डिस्टिंग्विश्ड म्यूजिक घराना ऑफ वाराणसी, देवव्रत मिश्रा रिसीव्ड इनिशियल म्यूजिक ट्रेनिंग फ्रॉम हिज मदर प्रमिला मिश्रा and underwent formal training in the sitar under the guidance of his father, Padmashri Pandit Shivnath Mishra. An A-grade artist of Akashvani, Devvrat Mishra received distinctive lesson of

0: आप सुन रहे थे राग जोग। देवव्रत मिश्र अब प्रस्तुत कर रहे हैं राग गोरख कल्याण में सितार वादन। मध्य लय रूपक ताल में निबद्ध है और द्रुत तीन ताल में है।
1: यू जस्ट हर्ड राग जोग। देवव्रत मिश्रा इज नाउ प्रेजेंटिंग सितार रिसाइटल इन राग गोरख कल्याण। मध्य लय इज सेट टू रूपक ताल एंड द्रुत इज इन तीन ताल।

0: राग गोरख कल्याण के बाद देवव्रत मिश्र अपने सितार वादन का समापन दादरा ताल में निबद्ध राग मिश्र पीलू में धुन से कर रहे हैं।
1: आफ्टर राग गोरख कल्याण, देवव्रत मिश्रा इज कंक्लूडिंग हिज सितार रिसाइटल टुनाइट विद धुन कंपोज्ड इन राग मिश्र पीलू सेट टू दादरा ताल।

0: ये थी सितार पर प्रस्तुत राग मिश्र पीलू में धुन। कलाकार थे देवव्रत मिश्र। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आपके साथ तबले पर संगति की प्रशांत मिश्र ने। आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र पर रिकॉर्ड इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।
1: दिस वॉज धुन इन राग मिश्र पीलू प्लेड ऑन सितार बाई देवव्रत मिश्रा इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। अकंपनीइंग हिम ऑन तबला वॉज प्रशांत मिश्रा। अर्लियर रिकॉर्डेड एट आकाशवाणी वाराणसी, दिस प्रोग्राम केम टू यू फ्रॉम दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।